0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: जी मैं ताहिर नैयर, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।
1: तुल्लाहे वा बरकातहु। संगीत दोस्तों, बहनों, भ्रारो, सजनों, बिरो ते मित्रों, मैं अज़ीम खान प्रोग्राम अपना ग्रह कीर्तन सुनी खिदमत च हाजिर होया। थोड़ा जिहा जनाब हाजी मोहम्मद मोहसिन साहब प्रोग्राम में शामिल, सलाम अर्ज करने। इन्हें तो अलावा जनाब नंबरदार राजा सफैल अहमद खान साहब नाल बंदो साडा प्रोग्राम में शामिल, सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद मकसूद आप रठवा मीरपुर कश्मीर जनाब मौजूद है। तो इन्होंने बुझने पाले पियो गीत करने जनाबरदार फैजाद सफेद ना खान खान साहब, उस तो बाद जनाब नंबरदार सारी नंबरदार गुलराज साहब, ते उस तो बाद राजा मतरूब खान साहब, तो बाकी जितनी भी थोड़ी टीम ही उन्होंने सारे ने ना बिस्मिल्ला, बाकी टीम सारी जनाब बिस्मिल्ला।

FM 96.7 is thinking तुसां आस्तै पेश करने आं जनाब अपनी मिठी मिठी मौज 7 FM. अगर तुसां साढ़े स्टूडियो स्टूडियो विच नंबर 4261-8181 ते जे तुस शर्मिले जुड़ना चाहने कि तुसें आवाज़ साढ़े तक पुज्जे ते व्हाट्सएप पर सुख सुनेहा लिखी दा जनाब भेजी छोड़िया मास्टर मोस्टर होने तरह 0793984939 साढ़े प्यारे भाई जनाब चेयरमैन मोहम्मद महमूद खान साहब प्रोग्राम में शामिल है इन्होंने तलक गगनाड़ा कोटली आजाद कश्मीर आल मकीम शफील हमेशा साढ़ा साथ देने जनाब ते आखने जी कि नाइस प्रोग्राम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब ते हुण ये अगले माइये ते टप्पे चेयरमैन जी स्पेशली तुसां आस्तै ते बाकी जितने भैणां भ्रा साढ़े आस्तै मौजूद है उन्होंने सारे आस्तै बिस्मिल्लाह जी चेयरमैन जी

0: तमाम बहन भाइयों के साथ कोई बात कर सकूँ, और मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे मैं नाचीज़ हूँ, मुझे आपने याद फरमाया, मैं हाजिर हूँ।
1: ऐसा माशाल्लाह, आपको तो बरतानिया में लोग जानते हैं, शहरों में लोग जानते हैं आपकी खिदमात की बिना पे, लेकिन शेफील्ड में वैसम तंग कोने कोने अगर आप जाएं तो आप पहचाने जाते हैं। ओवर 7 decades अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ बरतानिया में रहते हुए एक बड़ी खिदमात आपने अंजाम दी है, उसी के हवाले से भी बात होगी। लेकिन हाजी साहब, हम ये चीज़ जानना चाहते हैं, आप पाकिस्तान, आपका तल्लक कौन से गांव से है, कौन से शहर से है?
0: जनाब, मैं गांव मोवाड़ा है, और ये तहसील का उठा, ज़िला रावलपिंडी का एक

0: भाई साहब, आप इब्तदाई दौर, आप की उम्र के लिहाज से देखिए, आप उस वक्त तो आपकी कितनी उम्र होगी जिस वक्त ये पार्टीशन हुआ पाकिस्तान में?
1: मैं 1947 में मैं मैट्रिक का इम्तहान दे रहा था
0: माशाल्लाह
1: जब
0: माशाल्लाह
1: ये पाकिस्तान बना। तो
0: माशाल्लाह,
1: जी
0: तो आपने अपनी आंखों से सब पाकिस्तान को
1: हाँ जी,
0: बनते हुए देखा।
1: बहुत ही दर्दनाक वाक़यात देखे। मैं रावलपिंडी में था, मैट्रिक मैंने डेनिस हाई स्कूल रावलपिंडी में की है,
0: जी
1: तो वो सदर में बहुत मशहूर स्कूल था। मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे, उन्होंने साथियों से मशवरा करके मुझे उस स्कूल में दाखिल कराया।
0: बोर्डिंग स्कूल था या
1: नहीं, वो बोर्डिंग स्कूल
0: नो
1: नहीं था।
0: नॉर्मल स्कूल था?
1: वो उस सिलसिले में हमारे एक पीर साहब थे, हमारे इलाके में उनके मुरीद थे।
0: अच्छा
1: तो मेरे वालिद मुरीद तो नहीं थे, लेकिन दोस्ताना उनसे वरासत थे। वहाँ उन्होंने मुझे छोड़ा, तो मुझे उससे फ़ायदा ये हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे दीनी लिहाज से भी मौका मिला कि मैं बेरा रवि मेहनत गया।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, अभी भी मैंने बात की है जो वो दौर जो अगर देखा जाए जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, आपकी अगर मैट्रिक आप पढ़ रहे थे तो ज़ाहिर है आपकी उम्र उस वक्त 15 के लगभग तो
1: जी हाँ जी
0: हुई होगी
1: जी
0: उस वक्त है। उस वो मंज़र, वो सीन्स, वो आपके गांव में वहाँ अपने जो वहाँ हिंदू रहते थे, सिख रहते, आपके इलाके में भी रहते थे उस वक्त या
1: हमारे
0: वो गांव
1: तहसील
0: में?
1: कोटा जो शहर है
0: जी
1: वहाँ ज़्यादा सिख होते थे, सिखों का कारोबार होता था। तो
0: अच्छा।
1: ऐसे हुआ कि उन एक बहुत बड़ा ऊंचा गुरुद्वारा बना हुआ था, तो वहाँ उन्होंने महाज बना रखा था हमारे गांव की तरफ से आते हुए। तो वाक़या उस वक्त ये था कि कई लोगों पर मुसलमानों को उन्होंने मारा, लेकिन एक हमारा अपने मेरी बिरादरी का मुआड़े का लिखा, वो गुरुद्वारे के पिछवाड़े से पता नहीं किसी तरह क्लाइंब करके ऊपर गया। वो जो ऊपर बैठा हुआ था हमला करता, उसे उठा कर नीचे फेंका।
0: फेंक दिया।
1: तो अल्लाह ताला ने, और हालात ये थे कि रात को लोग अपने घरों में नहीं सोते थे। वहाँ ये था कि माझा और मारवा के सिख आए हुए हैं यहाँ, और वो तो उस खतरे से वो ऊपर ऊंची जगह पहाड़ी पर जाकर रात को सहते थे। वहाँ
0: तो
1: गांव का तो ये हाल था। तो
0: जी
1: शहर में मैंने अपने आँखों से देखा ऐसे कई लोग जाते जाते उसको मार के गिरा
0: फेंक
1: देते थे।
0: देते थे।
1: तो बड़े दर्दनाक वाक्य था। तो मैं जो जिस जगह था वह रेलवे लाइन के बिल्कुल किनारे थी, तो
0: अच्छा।
1: मरीड़ का जो पुल है शहर में
0: जी।
1: शहर की तरफ जाते हुए, तो वहाँ मुसलमान जो है ना वहाँ जत्थे खड़े हुए थे, क्योंकि हिंदू हिंदुओं के पास वो ज़्यादा हथियार थे। तो मुसलमान वहाँ जमा हो के, तो बड़ा दर्द बयान नहीं कर सकता।
0: लेकिन आज साहब, अगर देखा जाए भाई, ये वही लोग थे जिनके साथ आप रहते बैठते, मिलना जुलना, खाना पीना सब कुछ एक ही था,
1: बिल्कुल
0: लेकिन एक ऐसी आवाज़ उस वक्त उठी बंटवारे की जिस वक्त आवाज़ आई तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, अपने आप को बचाते बचाते
1: मैं
0: कितनी
1: आपको
0: बचाई।
1: बताऊं, जब रावलपिंडी सदर में
0: जी
1: बड़े मशहूर फार्मेसी थी,
0: अच्छा
1: उसका मालिक जो है वो बड़ा हिंदू था लेकिन दर्दमंद था। साफ बड़े उसकी इज्जत थी, मुसलमानों के साथ बड़े अच्छे तरीक़ात थे, लेकिन
0: जी
1: वो जब शहर छोड़ जाने के लिए स्टेशन पर जा रहा था, तो उसे एक आदमी ने छुरा घूम कर मार दिया। बड़ा दर्दनाक, उस वक्त मुसलमानों को भी अफसोस हुआ,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: ऐसे वाकयात थे।
0: जी जी हाँ। ऐसा आजकल के में दौर देखा जाए, अभी 80 बरस के लगभग वक्त हो चुका है पाकिस्तान को बने बने हुए, हिंदुस्तान का मर्द वजूद में आते हुए आए। ये ज़रूरी है, ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में ये चीज़ उनको भावर कराई जाए कि उस वक़्त हिस्ट्री क्या थी, या अब वो छोड़ देनी चाहिए?
1: मैं समझता हूँ ये नहायत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। मैं कई दफ़ा अपने मस्जिद में कहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो

0: रेस्टोरेंट है ये
1: अरूज, अरूज
0: अरूज है वहाँ एक वो जगह कहीं और एक अरीना जहाँ बना ये जगह और तीसरी जगह एक जगह वो जो हमारे डेयरी फार्म होता था वो मिला तो एक ये स्कूल था तो मैंने फिर रिपोर्ट सारी देता था मीटिंग में तो मैंने कहा जब वो डेयरी फार्म का वो बड़ी डेयरी थी
1: वो कौन सी जगह थी
0: ये हमारे
1: नर्सी रोड
0: एबिडेल
1: ठीक ठीक समझा गई वहाँ जो बात्स के पास जो जगह
0: हाँ ये जो कैंसर का वहाँ तो मरहूम आसम साहब करने लगे उन्होंने पूछा देरी कहाँ है उन्होंने वो आसम साहब करने के आज नजीर के घर के पास है वो फिर सारे तो आज सदीक इंडस्ट्री रोड वाले उन्होंने कहा कि जोर से उन्होंने कहा वो यारा ये स्कूल के लिए कोशिश करो ये अगर मैं वो दे दें तो
1: अच्छा अच्छा
0: मैंने फिर वो नेगोशिएटेड की तो ये स्कूल जो आज पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर का एक नामी और तमाम कम्युनिटी ना सिर्फ मुस्लिम पाकिस्तानी को सारी कम्युनिटीज की खिदमत कर रहा है अल्लाह के फजल करम से ये वजूद में आया तो शुरू में हमने काम शुरू किया फ्री वर्कर उसका जो बेकार अनएम्प्लॉयड लोग थे ना मिर्जा शफकत साहब का वो एक अरसे सोना वहाँ क्या वो नाम था उसका वहाँ वो फ्री कम्युनिटी के लिए मजदूर दे देते थे
1: अच्छा।
0: उनके जरिए हमने काफ़ी सारा उस बिल्डिंग को डेवलपमेंट किया
1: अच्छा,
0: तो
1: अच्छा,
0: फिर
1: अच्छा।
0: उसके बाद आर्किटेक्ट हमने उसने बनाए
1: ये बिल्डिंग की हालत खराब थी
0: जी
1: बिल्डिंग की हालत खराब थी इसकी?
0: खराब थी ना जी
1: अच्छा,
0: तो
1: अच्छा, अच्छा।
0: साथ ही ये स्कूल का था
1: अच्छा,
0: हमारे
1: अच्छा।
0: का वो वॉल्सर्स जड़े वो उन्होंने उनके उन पास मैकेनिक भी थे उसके
1: अच्छा अच्छा
0: तो जब आर्किटेक्ट बनाया तो ये जो सामने पार्क है ना उसके सामने जो आजकल वो छत पर पड़ी हुआ है मेरी ये ख्वाहिश थी मेरी
1: अच्छा।
0: ख्वाहिश थी मैंने उसे कहा इसके पैसे उन्होंने नहीं दिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पानी भी था तो मैंने कहा यह ऐसा हो के वजू करने की जगह मिल जाए और एक छत डाल दो ये मैंने उसे कहा पैसे मैंने शामिल लेकिन ताकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर कोई वक्त ऐसा आया कि हम इजतमा गठा ईद पड़े या कोई तो ये मैदान हो जहाँ इमाम उधर खड़ा होगा तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इस जगह को अच्छे अच्छे लोग कुछ मैं एक दो टर्म्स में सेक्रेटरी के लिए सेक्रेटरी कैसे थे काम करता रहा सेक्रेटरी से ऊपर मैंने कहा उसके बाद फिर बहरहाल तो आज मुझे जब मैं यहाँ आता हूँ मेरे दिल मेरा इतना अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला तो मुझे जरिया बनाया हमने ये जगह बनाई और आज और अच्छे हाथों में अल्लाह ताला ने इसको दे दिया आप लोगों ने इसको चार चांद लगाए और आज आइंदा भी जो हैं वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से इसकी तरक्की के लिए तरक्की और रोजी के लिए और वहाँ अपने खसूसन पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो मैंने शुरू से में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया था जहाँ तक मैंने उन्हें कहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो भी है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन शराब यहाँ नहीं होगी
1: नहीं होगी
0: शराब तो शुरू में तो उस वक्त फिर समाजी कम्युनिटी भी को इस्तेमाल करते थे लेकिन हमने अल्लाह के फजल करम से आप लोगों ने इसको बहुत मेरी उम्मीदों से ज़्यादा तरक्की
1: ऐसा मैं समझता हूँ कि आप लोगों की असल में बैकिंग रही है मोहब्बत रही है सपोर्ट रही है आप हमेशा हमारे साथ रही हैं जिसकी वजह पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपनी कोशिश के मुताबिक जितनी इसकी खिदमत करनी है वो की है अभी भी जो नौजवान वो पूरी इंतज़ामिया कर रही है आइंदा भी करेंगे लेकिन मैं समझता हूँ जो विजन होता है ना विजन ये होता है कि जो इंसान आगे 25

0: This is Ahmad Hussein and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
11: वेलकम बैक, खुश आमदेद जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। ये एक वाली स्पेशल और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी, और क्योंकि वक्त था ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, स्टे ट्यून्ड। और ब्रेक के फौरन बाद अब चलते हैं हम अगले कलाम की तरफ।

0: Hello everyone, my name is Leo.
1: My name is Azir Iqbal.
2: This is Dr. Shah Nawaz.
3: This is Counselor Shafak Mohammed.
4: My name is Ibra Hussain.
5: This is Aftab Behman.
6: This is Ibrat Tabassum.
7: I'm Chris Lewis.
8: My name is Javed Rashid.
9: My name is Mohammed Maru.
10: This is Sohail Mumtaz. You're listening to Link FM 96.7, Linking Communities.
11: वेलकम बैक तमाम सुनने वालों को एक बार फिर क्वाली स्पेशल में फैसल याकूब सुल्तानी का सलाम कबूल हो। ब्रेक के बाद अब आपको मजीद क्वाली सुनाएंगे, कलाम सुनाएंगे, तो चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

हैरान हूँ इस बात पे तुम कौन हो क्या हो, हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो। अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा।

एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है। खेल क्या तुमने अजल से ये रचा रखा है, रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी, उस पे फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है। देख तदबीर के पंछी को उड़ाने तुमने, दामे तकदीर भी हर समत बिछा रखा है। करके आरायशें कौनैन की बरसों तुमने, खत्म करने का भी मंसूबा बना रखा है। लामकानी का बहर हाल है दावा भी तुम्हें, नहनु अकरब का भी पैगाम सुना रखा है। ये बुराई वो भलाई, ये जहन्नुम वो बहिश्त, इस उलट फेर में फरमाओ तो क्या रखा है। जुर्म आदम ने किया और सजा बेटों को, अदलो इंसाफ का मियार भी क्या रखा है। देख इंसान को दुनिया में खिलाफत अपनी।

खुद ही लगवाते हो फिर कुफर के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो, अपनी हस्ती भी वही क्रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तेरी, तुम उसे झंग के बेले में रुला देते हो। जुस्तजू ले के तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। जोत सस्सी के अगर मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते

चुपचाप रहे देखते तुम अर्श बरी पर तपते हुए करबल में मोहम्मद का नवासा। खुद तीन दिनों से वो अगरचे था प्यासा, किस तरह पिलाता था लहू अपना वफा को,

0: keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations.
2: Hi, my name is Safa
3: and my name is Zainab.
4: You are listening to Link FM 96.7 FM.

0: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है ते द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाकेयां विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
4: Sky Education Training अब आपके शहर शेफील्ड में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं Sky Education पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड में उन तमाम लोगों के लिए B.Tech Level 2 for role of professional taxi and private hire driver जो शेफील्ड या रोदरम में टैक्सी चलाने के ख्वाहिशमंद हो सिर्फ दो दिन का कोर्स और टेस्ट अपना कोर्स आज ही बुक करने के लिए 0750-7500-507 पर राबिता करें या पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर से भी राबिता कर सकते हैं Sky Education, taking you to reach the sky.
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Your very own community radio station.
16: Link FM.

0: जे तू वापस जाना चाहना तो जरूर जा, मैं तेन रोकांगा नहीं। पर पुत्रा एक गल मैं तेन बड़े माण नाल कहना चाहना, तू जो कुछ इस बाप वास्ते कीता है, जो कुछ इन्हें इस शख्स वास्ते कीता, दुनिया का होर कोई पुत्र नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
1: हुण नहीं बापू जी, आ पासपोर्ट भी तुहाडा ते मैं भी तुहाडा, मैं की लैन जाना उत्थे, मैं नहीं जाना।

0: 50 बरसों से द ओपन यूनिवर्सिटी ने नस्ल दर नस्ल लर्नर्स का साथ दिया है डिग्री कोर्सेज के लिए जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी काम और फैमिली के साथ एडजस्ट होते हैं और वो क्वालिफिकेशंस हासिल करने में मदद देते हैं जिनकी इम्प्लॉयर्स को तलाश है अपनी कम्युनिटी के बहुत से लोगों की तरह अली ने भी डिग्री हासिल करने का ख्वाब देखा हालांकि उसे कई यूनिवर्सिटीज से ऑफर्स थी लेकिन माली पाबंदियां रास्ते में रुकावट बन गई फिर उसे द ओपन यूनिवर्सिटी
1: की सूरत
2: Childhood vaccinations give your children the best protection and prevent over 5,000 deaths each year in England. Childhood infections can cause serious illness, hospitalization, and lifelong disabilities. Childhood infections like measles and whooping cough are still around and spread easily in our communities. If your child isn't vaccinated, they're not protected. All childhood vaccinations offered by the NHS have been used in millions of children worldwide and have an excellent safety record. It's important that vaccines are given on time for the best protection. But if your child has missed a vaccine, contact your GP to catch up. Are your child's vaccines up to date? Check their red book or speak to their GP practice. For more information, visit nhs.uk/childhoodvaccinations.
3: दिल से दिल को मिलाता हर रंग हर आवाज को सजाता आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ
4: लिंक एफएम शेफील्ड

को मैंने इल्म सिखाया, नुक्ता फिर वही पर है, मैंने इल्म सिखाया। और कहते हैं कि जब ये इल्म, फिर अल्लाह ताला ने जो है इससे मुफ्ती सवाल जवाब जवाब किए, चीज़ें सिखाई, पूछी और जो आदम ने समझ बता दी, तो फरिश्ते भी जो है वो फिर जो है वो दोबारा अपनी उस बात पर पहुंच गए कि वाकई जो चीज़ें जो है हमें नहीं पता, ये वाकई आदम जो है वो ये जानते हैं। तो ये इल्म जो है ये इंसान को सिखा कर, आदम ने सिखा कर जो है भेजा गया। फिर आलम अरवा के अंदर ये सारी चीज़ें, तो ये इल्म जो है ये असल में ये चला आ रहा है इस तरीके से, ये इल्म के ख़जाने ये मौजूद हैं रूहानी तौर पर हर बंदे के अंदर। अब जो इल्म जो है ये कुरान पाक में भी जब ये सूरत इकरार जो है वो नाज़िल, पहला इसी बारे में कहा गया कि पढ़, और वही अल्लाह पाक है जिसने इल्म सिखाया कलम से, और इंसान को वो चीज़ सिखाई जो ये नहीं जानता था। इसका मतलब यह है कि ये सबसे जो बहुत जो सबसे अव्वल चीज़ है वो इल्म है। इल्म का मतलब मानिए यह जानना सीखना। और अब जानना और सीखना क्या है, एक तो ये जानना सीखना यह कि मैं खुद क्या हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने किस मकसद के लिए बनाया, और दूसरा जानना सीखना यह भी है कि ये दुनिया, ये कायनात जो है ये किस तरीके से बनी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जो है तस्खीर करना, उन चीज़ों तक पहुंचना, उसकी ता तक जाना, ये असल में इल्म ये है। इल्म जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अब फ़र्ज़ इसलिए है, सीखना इसलिए फ़र्ज़ है कि जब इंसान इल्म सीखता है तो उसको पहचान हो जाती है, उसको सही और गलत का जो है पता चलता है, सच और झूठ का पता चलता है, असल मंजिल का पता चलता है, और वो उसको उस मंजिल पर चलने में आसानी जो है पैदा होती है। या इसकी मिसाल सर दी जा सकती है कि एक अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, वो शबे दैजूर है, और रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा। अब एक रोशनी अगर इंसान को मिल जाए, एक लाइट, एक बल्ब, एक बत्ती, वो चीज़ मिल जाए, तो वो उस रोशनी के ज़रिए चल पड़े, तो कितना वो खुश होगा, अपनी मंजिल में उसको पहुंचने में कितनी आसानी होगी। यही जो है कहा गया कि इल्म एक नूर भी है, ये एक रोशनी है जो इंसान को जो है वो मुहैया होती है। अब मज़ीद जो है बात यह है कि ये इल्म जो है वो दो ही किस्म का होता है, दो इसके ज़राए हैं। अब एक ज़रिया जो है वो ये है कि जिस तरीके से हम इल्म सीखते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, किताबों में, इसके बाद जो है उस्ताद से, इसके बाद जो है वो मीडिया से, माहौल माशरे से। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो स्कूल नहीं भी गए, उसके बावजूद भी बड़ी अच्छी बातें उनके वो करते हैं। इसका मतलब यह कि उन्होंने वो चीज़ें जो है वो अपने अहबाब से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने माशरे से, अपनी महफ़िल से वो चीज़ें उन्होंने सीखी है। और अगर ये इस बात पर गौर भी आप करें कि जो पुराने बुज़ुर्ग थे, हमारे ही बुज़ुर्ग थे, उनके पास वो बहुत बड़ी तालीम PhD वाली नहीं थी, वो उनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियाँ नहीं थी, लेकिन उनके पास वो डिग्री थी जो अब हमसे छीन ली गई है। वो डिग्री ये थी कि वो आपस में बैठते थे, वो बुज़ुर्गों की महफ़िल में बैठते, उनकी बातें सुनते, उनके जो है तजर्बे से जो है फ़ायदा उठाते। अब जो है वो इल्म, एक इल्म तो इस तरीके से इंसान तक पहुंचता है, और बड़ी मज़े की बात यह है कि वो पहुंचता रहता है। फरमाया गया कि माँ की गोद से गौर तक इल्म हासिल करो, यानी जो ही एक बच्चा पैदा होता है और फोत होने तक ये एक टाइम है, ये जो है ये इल्म लगातार जो सीखता रहता है, हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ सीखता है। लेकिन सीखने का ये इसकी नीयत क्या है, इसका रुझान क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है ये अमल इस पर कितना करता है, बहरहाल ये इस पर बाद में बात करेंगे। एक तो इल्म ये हो गया जो हम किसी ज़राए से, किसी तरीके से, किसी ज़रिए से हम जो है वो सीखते हैं। इस इल्म को इल्म कस्बी कहा जाता है, जो किसी ज़रिए

शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे। थर्सडे 28th of May 2026 को अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576।

0: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
1: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे। थर्सडे 28th of May 2026 को अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576।

जी बस धोखा मिला है जी, धोखा क्यों मिलता है। चलो जी मौला खुश रखे आपको। दिस इज लिंक एफएम 96.7 FM। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

जी वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. इफ यू जस्ट ट्यून इन, दिस इज लिंक एफएम 96.7 एफएम एंड दिस इज ड्राइव टाइम शो. आई एम योर होस्ट जवाद जंजुआ. And I'll be with you till 6 o'clock. I present 4 drive time shows, Monday till Thursday, 4 till 6, on your favorite radio station, Link FM 96.7 FM. Link FM, linking communities, thinking positive. I hope you will enjoy our company till 6 o'clock.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Community Radio for Sheffield. This is

जी उम्मीद करते हैं कि अब तक आप हमारे साथ साथ होंगे और मैसेजेस भी हमें आए हुए थे और मैंने मैसेजेस शामिल नहीं किए प्रोग्राम में। शाह थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। आप कह रहे हैं कि सलाम ब्रदर, हाउ आर यू, व्हाट अ ग्रेट शो, कीप इट अप। कलीम ने भी ज्वाइन किया हुआ था, वो भी कह रहे थे सलाम। शबराज खान ने भी ज्वाइन किया था, वो कहते हैं सलाम। अफशा ने भी हमें ज्वाइन किया था, वो कह रही हैं सलाम अलैकुम। और बाजी क्या करें, जुनेद यूसुफ ने भी ज्वाइन किया है। आते साथ ही वो जो होते हैं ना, वो जो होती हैं, एक वो हर एक के खानदान में भी होती हैं और हर एक के गांव में भी होती हैं, जो हर बात पे ताने देती हैं। समझ गए होंगे आप, आते साथ ही ताने देने शुरू हो गया भाई। सलाम बिजी मैन, वालेकुम अस्सलाम। सर बिजी बिकॉज आई डोंट एनीथिंग, यू अंडरस्टैंड। है भी तो इसको काम में लाया नहीं जाता। थ्योरी अपनी सिंपल है यार, जिंदगी में अपने आप को इतना बिजी कर लो, रात को जब आप घर जाएं, बिस्तर पर जैसे ही आप बैठें उसी वक्त आप सो जाएं। टाइम नहीं है ना सोचने का यार। अगर बंदा वो क्या कहते हैं कि पता नहीं बंदे ने सोचिया तो पता नहीं की होया, अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा। तो सोचना नहीं चाहते इसलिए अपने आप को बिजी रखता हूं, काम करता हूं, मेहनत करता हूं। यार इसमें क्या है यार, किसी को तकलीफ दे रहा हूं, किसी को किसी से झूठ बोल रहा हूं, किसी को धोखा दे रहा हूं क्या? अपने काम से काम, मुंडी को नीचे रखता हूं, अपने काम से काम आप सब लोगों के लिए दुआएं करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए दुआ करते होंगे। हाँ ये जरूर है, ये बात मैं मानता हूं, ऑन सीरियस नोट पे मानता हूं भाई कि मैंने अपने आप को बहुत बिजी किया हुआ है। बहुत टाइम था मेरे पास, बहुत वेस्ट कर लिया मैंने टाइम। अब टाइम ही नहीं है कि टाइम वेस्ट करूं। अच्छा एक और भी मासी है हमारे पास जैसे जुनेद मुझे ताने मारता है, एक और बंदा भी है भाई। मैं बोलूं कि ना बोलूं, ये भी तानों पे ताने, ताने पे ताना। यार क्या जरूरत है भाई, जरूरी है ताने देना यार। मेरी कमी मेरे जाने के बाद याद आएगी, मेरी कमी मेरे जाने के बाद जरूर आएगी, ये तो मुझे पता है यार। मसला पता क्या है, अब मेरी बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि जब मैं किसी की जिंदगी से निकलता हूँ, फर्ज करें आज की जिंदगी से निकलूं, रेडियो को छोड़ जाऊं, लिंक एफएम को छोड़ जाऊं, फर्ज कर रहे हैं हम, तो क्या आप मुझे मिस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और उसकी वजह ये नहीं है कि आप मुझे मिस करेंगे, उसकी वजह यह है कि मैंने आपके दिल के अंदर ऐसा मुकाम बना लिया होना चाहिए कि आप मुझे मिस करेंगे। भाई अगर आपको जिंदगी में कोई मिस नहीं करता, आपके बारे में सोचता नहीं है ना, तो ये उस बंदे का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपको दूसरों की जिंदगी में, दूसरों के दिलों में, दूसरों के दिमाग में ऐसे अपनी मोहब्बत, अपना खुलूस डाल देना चाहिए कि वो चाह के भी ना भूलें। और मुझे यकीन है कि आप चाह के भी मुझे नहीं भूलेंगे।

0: भी हमें ज्वाइन कर लिया। ये सारे पांच के बाद आते हैं, मैं पता नहीं पांच से पहले क्यों आ जाता हूँ। जिस दिन मैं कम बोल रहा होता हूँ उस दिन जनाब फतवे लग रहे होते हैं मेरे पे,
1: यार आपकी तबीयत ठीक है, यार जिंदगी में कुछ हो गया, यार क्या बात है आज आप बोल कम रहे, आज बहुत मसरूफ लग रहे हैं। और जब मैं बोल रहा होता हूँ तो फिर लेट आ रहे होते हैं सारे। आप लोगों की तरह बन गया हूं मैं। सितम करोगे सितम करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। और होना भी यही चाहिए ना कि अगर आपसे कोई वफा कर रहा हो तो आप उसे वफा करें, जफा कोई कर रहा हो तो उसे जफा ना करें। ये इस पे मेरी थ्योरी अलग है, कोई आपके साथ अच्छा ना करे तो यू नो व्हाट, साइड वे हो जाए, छोड़ दें। लेकिन एक लिमिट तक इंसान दूसरे शख्स के साथ वफा कर सकता है, एक लिमिट होती है कि आप अगर सिर्फ आप ही कुर्बानियां दे रहे हो, अगला बंदा कभी ये कहानी कभी वो कहानी सुना रहा हो तो उससे जफा या बेवफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को साइड पे कर दें, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। पहले आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो किसी दूसरे से मोहब्बत कर सकेंगे ना। अगर आप अपने से ही मोहब्बत नहीं करेंगे, मैं समझ सकता हूँ कि भाई प्यार में आदमी दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है, ख्वाह वो रिश्ता किसी भी किस्म का प्यार हो, किसी भी किस्म का। ज़रूरी नहीं होता कि मैं सिर्फ एक ही प्यार की बात कर रहा हूँ, भाई दोस्तों के अंदर भी प्यार होता है ना। अब आपका दोस्त आपको हर दफ़ा रोटी पे लेके जाता है, रोटी शोटी खिलाता है और बिल वही देता है, तो उसकी एक लिमिट होगी ना कि वो एक लिमिट तक बिल देगा, उसके बाद वो बोलेगा यार ये तो फ्री में खाना खाता है भाई। ऐसा है कि नहीं, ये भी बताइएगा कि आप सबकी जिंदगियों में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आपको पूरा ख़ानदान पूरी फैमिली इस्तेमाल कर रही होती है आपके पैसे, जहाँ बिल की बात हो आपने देना है, कहीं शॉपिंग पे जाना है आपने लेके जाना है। तुम गाड़ी बड़ी अच्छी चलाती हो, यार तुम्हारी गाड़ी बड़ी अच्छी है, तुम्हारी चॉइस बड़ी अच्छी है, तुम अपने लिए कपड़े लेने जा रहे हो मेरे लिए भी ले आना, और खाने के लिए जाओ तो भी खाने का बिल, यार माशाल्लाह तुम काफी सेटल हो, तुम दे दो। कभी ऐसा होता है। और फिर पता है क्या होता है, कुछ चीजें कहते हैं ना दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू कैन डू इट। तुम पत्थर के बने हुए हो भाई, तुम्हें मैं जितना दबाऊंगा जितना धोखा दूंगा तुम कर लोगे, बिकॉज तुम बहुत मजबूत आदमी हो। होता है ऐसा आपकी जिंदगी में, ऐसा कोई एक शख्स है जरूर बताइएगा। 0114261 8181। वी आर गोइंग फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीम अजारवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोधर हमको ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment. Every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
6: Do you want to make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
7: तुसा की है परेशान खलते हुए जी?
8: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
7: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले, वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावें कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
8: एएमओटी वाले है किधर?
9: एएमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी निकरो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
10: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368 or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.
11: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 445.
0: Welcome back after the commercial break. And this was our last commercial break. I hope you are enjoying the Drive Time Show.

कहानियां सुनो इसकी, लंबी लंबी छोड़ है। और फरासियाब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और उस्मान ने भी, उस्मान क्या कह रहे हैं, अब निगाहों से बचकर कहां जाओगे। ये चीटिंग है उस्मान भाई। उस्मान भाई को मैं कई दफा बिल्कुल के सामने से गुजर जाता हूँ, उस्मान भाई को नहीं पता कि मैं कौन हूँ। एंड समटाइम्स वी गो टू द सेम मॉस्क, लेकिन कह रहे हैं कि आप निगाहों से बच के किधर जाओगे कि आपकी आईडी से पिक्चर ले लिए। मेरी आईडी से पिक्चर, मेरी आईडी से कौन से, मतलब मेरे मोबाइल की आईडी पे तो मैं समझ सकता हूँ पिक्चर होगी, लेकिन चलें देखते हैं उस्मान भाई। अच्छा जी, एक क्या करें यार, दिल बड़ा उदास है, लग रहा नहीं होगा मेरी आवाज से नहीं लग रहा होगा, लेकिन इंसान हूं ना, दिल उदास है यार, तो एक सैड ट्रैक सुनने का दिल चाह रहा है। एक फरमाइश भी आई थी हमें, किसी ने हमें मैसेज किया था और कहा था एक कुछ आज दो या तीन सैड ट्रैक्स लगा दें। क्यों भाई, अल्लाह खैर करे, क्या सैडगी है, सैडगी है, सैडगी, समझ रहे ना आप, एक होता है सादगी, एक होता है सैडगी। किस बात की परेशानी है यार, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए। तुम्हें इल्म होता, अगर तुम्हें इल्म होता तो फिर टेंशन किस बात की थी। और ये जो ट्रैक आपने फरमाइश की है, सैड ट्रैक की, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। कि तुम्हें इल्म होता,

6.7 FM, और कई लोग हमें कह रहे हैं हमें आवाज़ नहीं आ रही है। यार कौन लोग हो तुसी, ट्रैक पूरा हो गया और आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आवाज़ जा रही है, हवा की दोष पे जा रही है। जहाँ जहाँ कोई सुनना चाह रहा है जा रही है, जिसने नहीं सुनना उसको नहीं जा रही, और जिसने नहीं सुनना होता आप उसको कितना ही सुनाते रहें उस तक आवाज़ नहीं जाती, और जिसने सुनना हो आप मुंह बंद भी रखें तब भी वो आपकी आवाज़ सुन लेता। भाई पहले ट्रैक लगा हुआ था ना, अगर ट्रैक लगा था तो मेरी आवाज कैसे आती, क्योंकि मैं तो नहीं ट्रैक को गा रहा था। कौन लोग हो तुसी यार, अब मैं इन्हें बताऊं कि सुनना कैसे है रेडियो को, और ट्रैक कब लगता है और कैसे लगता है। कौन लोग हो तुसी यार, जिंदगी में पहले मेरे थोड़ी टेंशन है कि एक और टेंशन दे रही हो, कदे कह रही हो आवाज आ रही है, कदे कह रही हो आवाज नहीं आ रही। यकीनन आपके घर में बहुत लोग होंगे जिन्हें आप ये टेंशनें दे सकते हैं। भाईजान अपनी टेंशनें घर तक रखें यार, हमें क्यों दे रहे हैं, साड़ी प्लेट पहले ही फुल है। अच्छा ट्रैक की आवाज भी नहीं आ रही थी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर सुन रहे हैं, दोबारा आपको यही ट्रैक लगा के दें क्या? नहीं, मान लिया हो सकता है नहीं आ रही हो, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। तो आप सही कह रहे हैं, आवाज आ रही है आपको।

तो भाई आप ना सुना करें, आप बंद कर लिया करें। हमने आपकी मिन्नत तले की है कि आप सुने, वो ना सुनो मैं क्या यार, इनकी तो फरमाइश ही नहीं खत्म होती। यकीन करो इनको ब्लॉक करना पड़ेगा यार, कुछ लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा यार। मोहसिन भाई अब मैं आपको नाम भी बताऊं यार अपना, मोहसिन भाई याद है तुसी ड्राइव कर रहे हो या फिर तुहाडे नाल भी ओही हो रहा जिहड़ा मेरे नाल हो रहा। और भाई आप पूछने थे कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही आजकल, या गाने सुन रहे हो आजकल मुझे नींद ना आए, अल्लाह करे कि नींद आ जाए भाई, हम तो चाहते हैं कि नींद आ जाए यार। लेट्स प्ले अनदर ट्रैक। यार एक और सैड ट्रैक लग गया।

छोड़ो यार, मिट्टी पाओ यार। और मोहसिन भाई आपकी कौन बात कर रहा था यार, आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं मोहसिन भाई? जरा जरा सी बात पे आप नाराज ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मैं क्या मिसाल दूं आपको। मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, आपके अलावा भी लोग हैं मुझे तंग करने के लिए। यहाँ लिस्ट है, लंबी लिस्ट है मुझे तंग करने के लिए। मुझे ऐसे ही महसूस होता है मैं घर में बैठा हुआ, उधर भी कोई साल नहीं लेने देना, कमे में भी कोई साथ नहीं लेने देना। मैं की करा मिठू भाई, जी मेरे बाद आ रहे हैं हमारे दोस्त हमारे भाई आबिद राजौरवी साहब। मोहसिन भाई कह रहे हैं मैं स्लीपिंग, मैं ऐसे ही खुश हो रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो। जब ड्राइव टाइम हो रहा होता है तो आप सो रहे होते हैं, इसीलिए तो रात को नींद नहीं आती फिर।

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल.
2: जहाँ बातें बनते हैं, वही है Link FM. दिल से आपके साथ.
3: Link FM Sheffield.
4: जी दिल से आपके साथ यार, दिल से भाई, दिल से. ये ना बोलना कि हम दिल से आपके साथ नहीं होते, दिल से साथ होते हैं.
0: Go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
5: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
6: और हर सूर दिल को छो जाए,
3: वही है Link FM.
2: दिल से आपके साथ.
3: Link FM.

जी, और आज एक और मैसेज आया जी, कह रहे हैं कि अब पता चल रहा है कि ड्राइव टाइम शो है आज विद जेजे, क्योंकि बाकी जो दिन होते हैं हफ्ते के उसमें ड्राइव टाइम के करता है, तो के यार ये कौन लोग हैं भाई, इंसान हूँ भाई, इंसान हूँ, कभी अप एंड डाउन भी होता हूँ, कभी कम बोलने का दिल चाहता है, कभी ज्यादा बोलने का दिल चाहता है, कभी उदास होता हूँ, कभी खुश होता हूँ। ये एक दो जो मेरे लिसनर्स हैं ना, यकीन करो इनको खुश करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आता फिर सुनते क्यों है भाई। आप के साथ सुना करें, जे को

जी उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी आपने एंजॉय किया होगा. इट्स टाइम फॉर मी टू से अल्लाह हाफिज. यू लुक आफ्टर योरसेल्फ. इफ आई सेड एनीथिंग टू अपसेट यू आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज. रिमेंबर मी इन योर दुआज. लुक आफ्टर योरसेल्फ, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा आपको लुक आफ्टर ना करे. हकायक है ना. सो प्रोग्राम के दौरान अगर मेरी कोई बात बुरी लगी मुझे माफ कर दीजिएगा. फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Your number one for news in Sheffield, Link FM.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है ते द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाकेयां विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
4: Sky Education Training अब आपके शहर शेफील्ड में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं Sky Education Pakistan Muslim Center शेफील्ड में उन तमाम लोगों के लिए B.Tech Level 2 for role of professional taxi and private hire driver जो शेफील्ड या रोदरम में टैक्सी चलाने के ख्वाहिशमंद हो सिर्फ 2 दिन का कोर्स और टेस्ट अपना कोर्स आज ही बुक करने के लिए 0750-7500-507 पर राबिता करें या पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर से भी राबिता कर सकते हैं Sky Education, taking you to reach the sky.
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre, Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

हंसते मुस्कराते चेहरों और धड़कते दिलों को मेरा सलाम पहुंचे। तुसा सुनी रही हो लिंक एफएम 96.7। तुसा ना मेजबान, तुसा ना अपना भाई अब दसें तुसा सते शो किनी ते या कश्मीर ते पठवार दे रंग तुसा सारे ने संग। माड़ा ता तुसा ना साथ रहे सी छे तो किनी ते 8 बजे तोड़ी। और ए प्रोग्राम जनाब ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 ने ऊपर भी सुनिया जाई रिया। लिंक एफएम ने जितने भी लिसनर तुसा सुनी रहे हो और ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ने लिसनर तुसा सारे की मैं वेलकम आखना जी कश्मीर ता पठवार ने रंग सत बिस्मिल्लाह जी एन याखना सोनी ता मनमोनियो। जी साढ़े स्टूडियो ने नंबर आओ 1142618181। और साढ़ा व्हाट्सएप ने नंबर आ 0793984939। ये उम्मीद ही के हमेशा नी तरह माड़ा सोना साफ ता सुथरा साथ निभासो। गाने सुनसो भी ते सनासो भी। साढ़े नाल साढ़ी फेसबुक पर मेरे सोने वीर परा साढ़े दिल जानी साढ़े चंद ते साढ़े तारे आरफ रजा साहब जनाब इसलै दुबई तो साढ़े नाल मौजूद है। आने अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद क्या हाल है और आने जी कब वापस आयो मोहतरमा। जी सरकार मैं दो हफ्ते होइए वापस आया वा। आहने नाल जी के आरफ रजा साहब साढ़े बड़े प्यारे सोने साफ ते सुथरे वीर हंस मुख तांस मिजाज कि रौनक बाल हो गई मुर्शद ए सर ये रौनक नहीं बाल हो तुसा ने आखिया ना कमाला जिन्ना सोहनिया अखिया नाल असं की तकने हो। नाले नाले जनाब मेरे वीर यसरफ खान साहब इसलै सेंसर रजूर तो साढ़े नाल मौजूद है उन्हें की वेलकम आना। और उसके बाद मेरे सोने वीर मेरे माथे ना झूमर सर ना ताज अखिया ने तारे जिया हुसैन साहब वेलकम टू द शो जनाब। मेरे सोने वीर जिया जी तुसानी सेहत मुबारक कैसी है ठीक हो ना। ये खूब यखनी यखनिया खाओ देसी कुकड़ानिया ते नाले प्यादल भी चलो कार लेटी ना रियाए। और भी जितने तुसा लिसनर इसलै प्रोग्राम सुनी रहे हो एक बारी फिर तुसा की वेलकम टू द शो। हुण जुल्ले जनाब असा अपने इस प्रोग्राम ने पहले गीत नी तरफ ये असा अपने वीर जनाब आरफ रजा साहब जितने भी दुबई च अबू जेबी च जितने भी साढ़े वीर है परदेसी जिया हुसैन साहब उमेश चौधरी साहब वेलकम टू द शो। और आरफ रजा साहब आने जी के सलामत रहे जी जुग जुग जिए मोहतरम। और उमेश चौधरी साहब आने जी के एक के बैडमिंटन ग्रुप की तरफ से सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। सड़े बड़े प्यारे वीर मुनीर हुसैन साहब जी वेलकम इसलै सिंसा कोटला शरीफ तो असाना नाल मौजूद है। और स्पेशल जनाब गीत है जड़ा ये असा आरफ रजा साहब यसरफ खान साहब जिया साहब और मनीर साहब और जितने भी लिंक एफएम ने लिसनर है और नाले नाल ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ने
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਸਾ ਕਿਆ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖ ਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਈਸ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਸਾ।

जी बिल्कुल वेलकम आने सत बिस्मिल्ला जी एन आने इसे रोकने दौरान जनाब चौधरी जोएब गुजर साहब जनाब फोन किया सा मोहब्बत ना इजहार करी रहे से जनाब चौधरी तारक साहब मास्टर औरंगजेब साहब तो लाला मसूद साहब आने से जी के मास्टर मोहसन साहब जनाब अल मारूफ मास्टर काला खान साहब उन्होंने गाना लाओ जी नींदरा नहीं आंदियां तेरे बिना जी नींदरा नहीं नचनियां तो कोई जनाब उन्होंने कोई दवाई शवाई दियो ना कि नहीं नींदर अच्छा है इस तरह ना कर सद हाँ तो मैं पूछा हूँ नहीं नींदर अच्छी या नहीं अच्छी जरूर अच्छी अच्छी नींदर हूँ अगर ड्रग टाइम शो सुता मैं सुता हुआ यानी मैं स्लीप करना जी जान जी नेक्स्ट ट्रैक है जनाब चंद जमान मुगल साहब ना और स्पेशल जनाब राजक शाह साहब रस्ते और नसीर पखराल साहब मास्टर औरंगजेब साहब और जोएब गुजर साहब चौधरी तारक साहब लाला मसूद साहब मास्टर मोहसन अल मारूफ मास्टर काला खान साहब राजा गाजी खान जनाब और जितने सोने ग्रुप ने सारे संगी दोस्त बेली है तुसें ही पता कि सोने ग्रुप ने चेयरमैन राजा गाजी साहब है बिला मुकाबला मुंतखब हुए से जनाब और जनाब वाइस चेयरमैन चंद जमान मुगल साहब जनरल सेक्रेटरी जोएब गुजर साहब जनाब जी चंद जी नईम हजारवी साहब ने आवाज च एक छे हफ्ते हुए गीत आया वा मैं सुनिया तो नहीं लेकिन लाना इसे उम्मीद ने नाल के तुसा पसंद फरमा सो

कौन जुले हैं जनाब असा मलक अमीन साहब मैं पूरी ट्राई की थी सुना गाना लौने नहीं लेकिन शायद ये है या नहीं मुड़ी मुड़ी ये आशना ये स्पेशल जनाब कितने भी संगीत दोस्त है बेली है और ना सारे ने ना जनाब नसीर पखराल साहब ने ना भी चंद जमान साहब ने ना भी राजा गाजी साहब ने ना भी जितने भी टैक्सी ड्राइवर टेक वे रेस्टोरेंट आले और स्पेशल जनाब जेडे गड्डियां की ठीक करने उन वास्ते जेडे गैरेज रखे उन्हें उन वास्ते ब्रेडबोर्ड एशियन रेडियो जितने भी लिसनर है उन वास्ते

मैं दुनिया तो हर जी लेना गल प्यार नहीं है मलक अमीन साहब तुसा की अजय भी कोनी प्यार मिलिया ए राजे गाजी रंग की बाणा पे सी के सुना प्यार कुरे सजिए खबियो लोड़ी दा आंसर ते तुसने हवाला कर सन सारे नाल मामा दरबी खान जनाब इसलै मौजूद है असन की वेलकम आने और इस गीत ने दौरान सारे बड़े प्यारे भाई जनाब राजा शबीर जख्मी साहब ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਜਨਾਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਈ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਆਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ इस गीत तो बाद तुसते शेर लासा और खूबसूरत जहा शेर सुनासा ताकि तुसकी मजा आई जाए हूँ अस जुले जनाब नसीर पखराल साहब उन्होंने गीत नहीं जाना उन्होंने कोई नवा गीत भेजा जनाब सब चढ़िया मरूदों उत्ते खास करी जनाब राजक शाह साहब राजा गाजी साहब मास्टर औरंगजेब साहब चंद जमान साहब शमरेज भाई मलक अमीन साहब और तमाम लिंक एफ एम टीम और स्पेशल जनाब चौधरी अफजल टिंजली शरीफ के नाम जनाब जरूर जी क्यों नहीं लो जी नसीर पखराल साहब जागने हो ना ड्यूटी पर हो या घर हो खाना खाना पकाई रहे हो या खाई रहे हो अज क्या पकाया दे अज इधर दा बारिश लगी हुई अज जनाब रोस्ट तिक्के कबाब मच्छी शच्छी वै और नाल देसी पचूंगा मक्कें दी रोटी वै तो साग भी वै तो राजा शबीर साहब मक्कें दी रोटी पर जो घ्यो श्यो पिया वै नाल सिल्ले आली मर्ची भी वै तो फिर खाने ना अपना मजा आया नहीं ये जरूर दसो जी जी बिल्कुल नसीर पखराल साहब

0: जी बड़ा प्यार नाल मजा आई गया। तुसें सुनी रहे हो लिंक एफएम 96.7 तुसें ना मेजबान आप दसें तुसें ते प्रोग्राम पेश करी रहा कश्मीर ते पठवार ने रंग ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ने ऊपर भी प्रोग्राम सुनी जा सुनिया जा रहा असा उनकी भी अपने शो ने विच वेलकम आने हैं जी। राजा शबीर साहब हाफिज मजर साहब ने आवाज विच जनाब इस स्पेशल शेर तुसें पूरी टीम वास्ते और इसे उम्मीद ने नाल के तुसा पसंद कर सो
1: जनाब मिर्जा शहजाद साहब ठेकेदार अजहर साहब शेर खान साहब और जमील साहब जनाब इना साथिया निजात जनाब अब्दुल करीम साहब इन सारे साथियों की चाहत इमरान साहब सरवर मुगलाबाद इमरान रहमानी कैमरामैन कमरान शेर

वेलकम एक बार फिर जी, वेलकम टू शो जनाब। तुसा सुनी रहे हो लिंक एफएम 96.7। तुसा ना मेजबान आबद हुसैन, तुसा वास्ते प्रोग्राम पेश करी रहा कश्मीर दा पटवार ने रंग। तुसा सारे ने सब जितने भी ब्रेडफोर्ड एशिया रेडियो ने पर इसलै साढ़े संगी दोस्त बेली सुनी रहे उन्हें की सत बिस्मिल्ला जी है नो असं की जनाब नसीर पकराल साहब आए के बहुत शुक्रिया। बत साहब आतिक मोहम्मद साहब आने जी हाय जी हाय। मोहम्मद यसीन जनाब पिज़्ज़ा मास्टर साहब असं की भी वेलकम आने वंस अगेन। और नाल है तुसाना जनाब गाना आइडिया मार्केट इस गाने तो बाद और अच्छा जी किंग ऑफ साड़ी सज्जन ते साड़ी बेली साड़ी जिंद साड़ी जान धनवान मुश्ताक चौधरी साहब वेलकम टू द शो जनाब। लेकिन आज तुसा नाल जनाब मास्टर संगजेब साहब नाल और चौधरी जोहेब तारक साहब नाल बड़ी नाराजगी है जी कि तुसा दावत कहो कर लिया ते इदा जनाब समझी गई होना अगली गल ये तुसा चंगी तां नहीं कीती तुसा जुर्नामा उसी जुर्माना नहीं जुर्नामा 5-7 किलो गोल जनाब ड्यूसबरी जी रमनवास साहब ये गीत जनाब स्पेशल तुसास्ते तुसने संगीत दोस्तों दा बेलियास्ते अब्दुल रहीम चौधरी साहब परवान साहब और ये जितने संगीत दोस्त बेली सुनी रहे हो सारे ने खिदमत विच पेश कर सा से उम्मीद ने नाल के पसंद फरमा सो तुसने पसंद साडी पसंद तुसा खुश ते असा खुश समझी गई होना जे तुसा ना खुश होए ते फिर ए मुश्ताक पहलवान साहब सुखा ये नाराजगी होने की पक्की जी रवनवास लो गीत सुनो।

जी रामनवाल जी, कैसा लगा गीत? सुनिया दे या नहीं दे सुनिया? जे सुनिया दे तो व्हाट्सएप ने उपर जरूर तुसा मैसेज किया, मैं चेक करना। बिल्कुल जनाब, तुसा आया जी, माशाल्लाह जी, जबरदस्त जनाब, क्या बात है जी, वाह जी वाह, रामनवाल जी मजर राई साहब की आवाज ही। मैं तुसा की गीत सुना और टिकटॉक ने उपर भी लाइव है जनाब, और जितने भी टिकटॉक ने ऊपर इसलिए बंदे संगीत तकी रे सुनी रे बुझी रे फेसबुक ने ऊपर या रेडियो ने ऊपर ब्रेड बोर्ड एशियन रेडियो और लिंक एफएम ने जितने भी लिसनर हो, तो सकी एक बारी फिर वेलकम टू द शो। और जनाब अरबी साहब साढ़े ना टिकटॉक पर मौजूद है, और भी जितने संगीत दोस्त है बेली टिकटॉक ने ऊपर इसलिए तकी रे सुनी रे बुझी रे, उन्हें सारे की जनाब वेलकम टू द शो। बड़े बड़े प्यारे गीत भी सुनासा और जी पिज़्ज़ा मास्टर मोहम्मद यासीन साहब, मलक अमीन साहब और जितने भी उन्होंने संगी है उन्होंने ये प्यारा गीत जनाब संगी पिज़्ज़ा मास्टर मोहम्मद यासीन साहब और आखिया सा जी के ये गीत लासो, क्यों ना लासा जी, नौकर तो फिर नखरा ये तो हो ही सकना नहीं, और शायद इस गीत ने बदला कोई सोना जा पिज़्ज़ा जनाब हाँ समझी गई, और बनाओ आप खाओ जी। बिल्कुल सुनो जी गीत।

जी जी जी मिर्जा मास्टर जी, मजा आया या नहीं आया? हूँ चलने जनाब ये अगले गीत की तरफ। ये गीत जितने भी साढ़े लिसनर है, जितने भी ओवरसीज कश्मीरी भैन का भरा और पाकिस्तानी उन्हें सारे नहीं नजर कर सा, बड़ा प्यारा जहा गीत आ सुन सो त जनाब मजे कर सो। और स्पेशल जनाब और लिंक एफएम ने जितने लिसनर ने, जितने भी टिक टॉक ने पर मेरे परदेसी भाई है और परदेसी बाल्टी आने जी सलाम अब साहब जी, और भी जितने तुसा जनाब मिलियन इसने व्यू है जनाब, क्या याद रख सो ना व्यू किता गाना सुनिया। हेलो जी असा कश्मीरी हाँ, प्यारा गीत जनाब, जितने भी कश्मीरी और पाकिस्तानी ओवरसीज जिथे जिथे भी सुनी रहे सारे ने ना जनाब।

जी जी तुसा सुनी रहे हो लिंक एफएम 96.7 है तुसा ना मेजबान आबद हसैन तुसा से प्रोग्राम पेश करी रहा कश्मीर ते पटवार ने रंग तुसा सारे ने संग ए शो जनाब इसले ब्रॉडबैंड एशियन रेडियो ने ऊपर भी देखिया जा रहा और जितने भी संगी बेली तुसा सुनी रहे हो तुसा सारे की एक बारी फिर वेलकम टू द शो और सत बिस्मिल्ला जी हैं क्योंकि उन ब्रेक ना टाइम बड़ा नजदीक आई गया और मैं कोई गीत ना लाना चाह रहा इस बारे के गीत पूरा नहीं होना रहा और शायद तुसा नी चस भी खराब हो जाए अगर तुसा कोई गीत सुनना चाहने हो या किसा की सुनाना चाहने हो तो तुसा की मैं नंबर दसना 01142618181 0011 42 81 81 ये साडा नंबर आ और नाल जनाब व्हाट्सएप नंबर आ 0793984939 ते फेसबुक ने पर चली भी रिया अगर सो फेसबुक पर तक ले हो जरूर जनाब अपना मैसेज भेजो या फोन करो ते तुसा की जरूर तुसा ना गीत सनासा तुसा नी मोहब्बत ते प्यार ना बड़ा बड़ा शुक्रिया जनाब तुसा अशने हो शोने बीच हाजरी लगाने हो मैसेज करने हो फोन कॉल करने हो और दिल भाग भाग हो जाना तुसा ना साथ जरा तुसा सारा साथ निभाने हो क्या ही मजा आशना जनाब नासर अजीज चौधरी साहब साढ़े नाल स्टोक एंड ट्रेंट तो है उन्हें की असा वेलकम आने हैं ये साढ़े साफी भाई है जनाब उन्हें की एक बार फिर वेलकम टू द शो और भी जितने साथी इसलिए फेसबुक पर या टिकटॉक ने ऊपर तकी रे रेडियो पर सुनी रे अगर वो भी कोई गीत सुनना चाहने तो जरूर जनाब हुक्म करो बंदा इन चीज तुसानी खिदमत जरूर हाजरी लगवासी बल्कि हाजिर है जनाब तुसाने हुक्म नहीं तामील कर सक एवरी वेनसडे ये शो शामी 6 to 8 PM जी हाँ तुसानी खिदमत लाइव पेश करना जनाब शहजाद गुजर साहब वेलकम जनाब और भी जितने साथी आ रहे हो क्योंकि टिकटॉक ने ऊपर बड़ी तेजी नाल संगी दोस्त तबेली तकी रे और बड़ा जनाब तेजी नाल वो गुजरी रे हर बंदे ना ना कि ना माड़े इसते मुश्किल हो जाना लेकिन फिर भी जरूर जनाब परदेसी पाल्टी साहब जनाब रबील अली साहब वेलकम टू द शो क्योंकि उन कंप्यूटर नी अखियां हो गई सुइयां सुइयां फुट कीतियां हुई चुप हो जा मैं ठीक है जनाब मैं चुप हो जाना आखिरी ब्रेक ही जनाब इसके बाद तुसा ना दा माड़ा साथ असी सिर्फ 5 मिनट तुसा की सोने सोने माये दुखी गीत सनासा तुसा ने गम दूर करसा तुसा उसते खुशियां लासा तुसा ने मुंह पर आसे बखेरसा जनाब

अपने शोने विच वेलकम आना असं की इजाज साहब आने से जी के बड़ी आशिक मजाज अखां तेरियां वे बदो बदी लड़ी जांदियां ये प्रोग्राम जनाब ब्रेडफोर्ड एशिया रेडियो ने ऊपर सुनिया जा रहा जितने भी लिसनर इसलिए सुन रहे बड़ी आशिक मजाज अखां तेरियां वे बदो बदी लड़ी जांदियां उन्होंने ना भी करसा और आसम मुगल साहब तुसने ना भी और जितने संगी दोस्त है बेली फेसबुक पर तकी रहे हो सुनी रहे हो बुझी रहे हो रेडियो पर सुनी रहे हो टिकटॉक ने पर तकी सुनी तो बुझी रहे हो सारे नी नजर करसा बढ़िया आशिक मजाज अखा तेरिया परदेसी पार्टी वेलकम जी आज ये तुहाडे वास्ते भी है जनाब क्या याद रख सो जे जे ब्रदर साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तुसने नाम ही जनाब

진짜 어리냐? रिजवान रिजवान लिया कच्छा माने सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम जी परदेसी बाल्टी आने जनाब के डबल टैप जी सॉरी जट साहब वेलकम जी तुसन के आला सॉरी जट जी बड़े अरसे बाद दीदार कर रहे दे सब के मुसाफिर जनाब ने भी ज्वाइन किया वा जी जुल्ले जी ना होना अगले ट्रैक नहीं जानब स्पेशल जनाब रिजवान लियाकत साहब और सारी जट साहब तो सास्ते

0: चाहत की मंजिल,
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे। थर्सडे 28th ऑफ मई 2026 को अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में। डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576।
1: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
4: और हर सुर दिल को छो जाए
2: वही है लिंक एफएम,
1: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदको का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और निदे। थर्सडे 28th ऑफ मई 2026 को अरूज बैंकुटिंग स्वीट्स में। डोर खुलेंगे 6:30 बजे। अभी अपना टिकट खरीदिए इवेंट ब्राइट से या कांटेक्ट कीजिए चौधरी करामत के साथ ऑन 07754132576।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: टुडे टुमारो एवरीडे शेफील्ड्स लिंक एफएम।

और सामिन, अभी आप खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज़ थी रात फतेह अली खां की। बोलना हल्के हल्के, वैसे इंसान के बोलने के भी मुख्तलिफ अंदाज होते हैं।

अमल दखल होता है कि एक बात आप कई तरीकों से कह सकते हैं। अहमद नदीम कासमी ने कहा था ना कि बात करने का जो डब हो तो हज़ारों बातें, बात करने का जो डब हो तो हज़ारों बातें, एक ही बात में कह जाते हैं कहने वाले। बात करने का जो डब हो तो हज़ारों बातें, एक ही बात में कह जाते हैं कहने वाले, मगर इनके लिए हर बात का मफहूम है एक। कितने संग दिल हैं इस शहर के रहने वाले। और समीन अब आपको एक और गीत सुनाते हैं और आपसे मुलाकात होती है इस गीत के बाद। उम्मीद करते हैं कि ये गीत भी आप सुनने वालों को पसंद आएगा। गीत मुझे बेहद पसंद है।

0: to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.

0: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aisi ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: ये होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाकेयां विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
4: Sky Education Training अब आपके शहर शेफील्ड में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं Sky Education पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड में उन तमाम लोगों के लिए B.Tech Level 2 for role of professional taxi and private hire driver जो शेफील्ड या रोदरम में टैक्सी चलाने के ख्वाहिशमंद हो सिर्फ 2 दिन का कोर्स और टेस्ट अपना कोर्स आज ही बुक करने के लिए 0750-7500-507 पर राबिता करें या पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर से भी राबिता कर सकते हैं Sky Education, taking you to reach the sky.
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: This is Ahmad Hussein and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Saim Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
11: शो विजिट एपी एंटरटेनमेंट और चौधरी करामत पेश करते हैं किंग ऑफ फोक म्यूजिक ताहिर नैयर। इसके अलावा साहिल नैयर, नकदा को का फेम्ड सारा अल्ताफ, फराह खान और

और जी हाँ सामीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंग महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM। यही नशात आप इस वक्त शेफील्ड में सुन रहे हैं CVFM लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और मिड्सब्रा और न्यूकासल में आप सुन रहे हैं CVFM के जरिए 104.5 FM पे। और आप सभी सुनने वालों को रंग महफिल में खुश आमदेद। कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677। काबले दीद ये आंखें हैं कि इन आंखों से, काबले दीद ये आंखें हैं कि इन आंखों से, खुद ही पामाल हुए, खुद ही तमाशा देखा।

और सामीन अभी ये खूबसूरत गीत आप सुनने वालों के लिए हम पेश कर रहे थे। फिल्म का नाम था अखियों के जरोकों से, शायरी और मौसीकी थी जनाब रविंद्रनाथ जैन की। जी हाँ, और बहुत कम सुनने वाले जानते होंगे कि रविंद्रनाथ जैन जो हैं वो नाबीना थे, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई ऐसी इंफ्रादियत ज़रूर बख्शी होती है, इनायत की होती है, जो उसकी पहचान बनती है। क्या ही कमाल का गीत लिखा और क्या ही उसकी कंपोजिशन की कि ये गीत आज भी सुना जाता है और इसकी फरमाइश आती है। और समीन, अब आप सुनने वालों को एक और खूबसूरत गीत हम सुनाएंगे। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है बेरंग।

बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे ही हो तुम

0: और सामिन, अभी आप खूबसूरत गीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। और आज हमारे स्टूडियो में मेहमान तशरीफ फरमा है, जैसा कि आपको पहले भी एक बार बताया था और आप जानते हैं कि कल स्कूल सिस्टम है ब्रेडफोर्ड में, LTU के अंदर ब्रेडफोर्ड में अपनी सर्विसेज आपके लिए पेश करते हैं, तो वो हमारे और हम उनके मीडिया पार्टनर हैं। और स्पेशली ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ने एक कोर्स स्टार्ट किया था, हाँ जी हाँ, एक प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर प्रोग्राम, जिसमें वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन ऑफर थी कि आप अगर आना चाहें और अपने एतमाद को बढ़ाना चाहें तो आप तशरीफ ला सकते हैं। तो उसी हवाले से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं खोला इफ्तखार, और इफ्तखार साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। इन दोनों को खुश आमदेद कहते हैं, और बड़ी अच्छी वैसे गपशप इनसे हमारी स्टूडियो में ऑफ द एयर हो रही थी। ज़्यादा कीमती बातें वही होती हैं हमेशा जो ऑफ द एयर हों, क्योंकि ऑन द एयर जो बातें की जाती हैं वो थोड़ी सी इंसान को मुश्किल में भी डाल देती हैं। जालब ने कहा था ना कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ज़ाहिर है जो हमारी आफ्ता एयर बातें होती हैं वो अगर ऑन द एयर चली जाएँ तो शहर में फसाद भी मच सकता है, इसलिए हम गुरेज करते हैं कि जो आफ्ता एयर हमारी बातचीत हो वो ऑन द एयर बिल्कुल ना जाए। तो सबसे पहले खुश आमदेद कहते हैं, खोला इफ्तखार स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खोला, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं आप?
1: आप कैसे हैं?
0: अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, आज पहली बार शायद आप स्टूडियो में तशरीफ लाई हैं, आपको स्टूडियो कैसा लगा?
1: जिंदगी में पहली दफा मैंने रेडियो स्टेशन देखा है, कोई भी स्टूडियो,
0: अच्छा
1: चाहे रेडियो हो चाहे टीवी का हो, जो भी हो, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ये अंदर से कैसा होता है।
0: जाहिर है एक बोल चाल के हवाले से कि इसमें सिस्टम नस्ब होते हैं कि साउंड प्रूफिंग होती है कि आवाज एको ना करे, अगर साउंड प्रूफिंग हम उतार दें तो फिर अपनी आवाज़ वापस कानों में आएगी, गूंजती है। वो किसी का शेर याद आ रहा है ना कि गूंज अपनी ही सही ताईद में आवाज़ तो है, गूंज अपनी ही सही ताईद में आवाज़ तो है, क्यों तेरे शहर से हम दश्त को बेहतर ना कहें। तो अच्छा लगता है बाज़ औक़ात कि अपनी गूंज भी वापस आए, तो एटलीस्ट यूँ एहसास होता है कि हमें कहीं से रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन रेडियो में ये चीज़ अच्छी नहीं होती कि अगर आपके कानों को आपकी आवाज़ टकराए तो सुनने वालों के नुक्ता नज़र से कि वो अच्छी भली नहीं लगती। तो और सुनाइए, आपकी क्लासेस कैसी जा रही हैं और क्या कुछ कर रही हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्लासेस तो बहुत अच्छी चल रही हैं। बस अभी मैं ईयर थर्ड ईयर में हूँ, तो मैं कर रही हूँ हेल्थ एंड सोशल केयर कोर्स कर रही हूं।
0: अच्छा,
1: तो देखिए अब नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह।
0: जब आपने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो कैसा लगा था कि चल पड़ेंगी या मुश्किल होगा? माइक के पास आ जाइए ताकि आवाज़ की क्लैरिटी अच्छी रहे।
1: नहीं, फर्स्ट उसमें जब आपका फाउंडेशन लेवल होता है उसमें तो आपको इतना एसएच प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, उसमें आप इजीली आप उसको लेवल को क्लियर कर लेते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है फिर उसमें ज़ाहिर है आपको प्रेजेंटेशंस होती हैं और असाइनमेंट्स होती हैं, वो सारा कुछ आपने करना होता है। और प्रेजेंटेशंस भी ऐसी हैं कि आपने विदाउट मींस के राइटिंग के और उसके आपने प्रेजेंट करना है और सबके सामने आपने प्रेजेंट करना है। फाउंडेशन लेवल में ये है कि वो समटाइम्स वो चले वो आपको थोड़ी सा रिलीफ दे देते हैं कि आप अकेली क्लास में आप टीचर है और आप प्रेजेंट कर दो। लेकिन जैसे लेवल अप होता है फिर थोड़ा हार्ड हो जाता है, मुश्किल होता है थोड़ा, कि आप स्टडीज़ भी लेके चल रहे हो और आप घर को भी देख रहे हो, आपने जॉब पे भी जाना है, तो उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: तो जो असाइनमेंट्स हैं वो ज़्यादा आपको मुश्किल लगी या फिर प्रेजेंटेशन जो थी?
1: नहीं, प्रेजेंटेशन ज़्यादा मुश्किल है, असाइनमेंट्स तो इजी है, वो आपने बनानी है और अपलोड कर देनी है, उसमें कोई ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं आता।
0: आपने बनानी है। चलिए राज है।
1: ऐसा ही है। लेकिन प्रेजेंटेशन जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, आपकी कांपें टांग जाती हैं।
1: ऐसा ही है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि इसके बाद आपके क्या हैं कि डिग्री कंप्लीट होने पे आप इंशाल्लाह इसी हवाले से
1: हाँ जी इंशाल्लाह।
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
3: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
4: अजीब किस्सा देखा खुदकुशी का। दुनिया से तंग आकर एक आशिक ने मोहब्बत कर ली।

0: और सामिन्य ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदीद। और सामिन, अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया तो आपको बताते चले कि आप इस वक्त सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर, और हमारी इस समय की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पे और CVFM मिल्सबरा से 104.5 FM पे भी ये नशात इस वक्त पेश की जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। और सामिन, अब रंग महफिल के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके और आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं। लाइव कॉल्स का सिलसिला ज़रूर होगा, ज़रूर तशरीफ लाइएगा। स्टूडियो का नंबर मिलाइएगा 01274306677, 01274306677। जी हाँ, हमारे वो सुनने वाले जिन्हें शायरी से प्यार होता है, उन्हें शायरी हर वक्त ज़ुबानी होती है, वो शायरी को ज़ुबानी होते हैं और शायरी उन्हें ज़ुबानी होती है। लेकिन हमारे वो सुनने वाले जिन्हें शायरी से इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता और वो शायरी से दूर होते हैं और शायरी उनसे दूर होती है, उन्हें अगर कहना पड़ जाए कि आज कोई गज़ल सुनाएं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो बेचारे डायरियां लेके आगे पीछे घर के दाएं बाएं घूमते फिरते हैं कि काश हमें आज कोई गज़ल मिल जाए जो हम सुनाएं। और ये करते करते दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है। लेकिन ये चीज़ भी, ये मरहले भी अच्छे होते हैं, ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों का नाम है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इफ्तखार साहब और उनकी अलिया मिसेस खोला इफ्तखार, इन्हें एक बार फिर स्टूडियो में खुश आमदेद कहते हैं। और सामीन, अगर आप भी तशरीफ लाना चाहें तो आप भी हमारी आज की इस महफिल में ज़रूर शिरकत कीजिएगा। आपसे भी लाइव गपशप होगी, कॉल्स कीजिएगा 01274306677 के जरिए आइएगा। और अब यूं करते हैं कि इफ्तखार साहब ने कोई खूबसूरत गज़ल ढूंढ ली है और हम चाहेंगे कि ये भी अपने अपनी आवाज़ में बनफ़ नफीस कोई खूबसूरत सा कलाम सुनने वालों के लिए पेश करें। और सबसे पहले इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमें इन्वाइट करने के लिए।
0: अच्छा, तो आप खैरियत से ठीक हैं?
1: जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से और आपकी खैरियत भी नेक मतलूब चाहते हैं।
1: शुक्रिया।
0: नेक मतलूब चाहते हैं, नेक मतलूब चाहते हैं। तो आज थोड़ा शायरी का सिलसिला इस वक्त होता है तो आप कुछ सुनने वालों के लिए सुनाएंगे?
1: जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं कि आपके सुनने वालों को प्रवीण शाकिर की एक अच्छी सी गजल सुनाई जाए।
0: जी जी जरूर जरूर।
1: प्रवीण शाकिर साहब एक बहुत खूबसूरत और बहुत आला पाए की शायरा गुजरी हैं। उनकी एक खूबसूरत गजल है।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: कभी रुक गए कभी चल दिए,
0: क्या कहने क्या कहने,
1: कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए।
0: आहा,
1: यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे।
0: क्या कहने क्या कहने,
1: कभी नींद में कभी होश में, कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देखकर, ना नजर मिली ना जुबां मिली, यूं ही सर झुका के
0: गुजर गए। क्या कहने क्या कहने,
1: कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हुस्न वजूद पर,
0: आहा,
1: जो पसंद थे मेरी किताब में वही शेर सारे बिखर गए।
0: क्या कहने क्या कहने,
1: मुझे याद है कभी एक थे, मुझे याद है
0: कभी एक थे,
1: मगर आज हम जुदा जुदा,
0: मगर आज हैं हम जुदा जुदा,
1: वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए।
0: क्या कहने,
1: कभी अर्श पर कभी फर्श पर,
0: ये तो ज़र्बुल मिसल का दर्जा रखता है ये शेर।
1: जी ज़रूर बिल्कुल। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर, गमयाश की तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए।
0: क्या कहने परवीन शाकिर के, मुझे उनका वो शेर याद आता है अक्सर के, दुख पहुँचता है बहुत दिल को रवैये से तेरे, दुख पहुँचता है बहुत दिल को रवैये से तेरे, और मदावा तेरे अल्फाज नहीं कर सकते।
1: वाह वाह, क्या बात, जबरदस्त।
0: और अब माइक आपकी तरफ बढ़ाते हैं और बताइएगा कि इफ्तिखार साहब ने जो गजल सुनाई आपको कैसी लगी?
2: मेरे सर के ऊपर से गुजर गई।
0: क्यों ये जहाज पे जा रहे थे? क्यों ये जहाज के ऊपर से जा रहे थे?
2: कुछ ऐसा ही है, मुझे शेर व शायरी से इतना लगाव नहीं है तो।
0: लेकिन अगर इन्हें है तो फिर इनकी वजह से तो बनता है कि आपको भी कुछ हो।
2: इन्होंने मुझे कभी सुनाया ही नहीं ना,
0: तो इन्होंने छुपा के रखे थे।
2: आज फर्स्ट टाइम सुनाया इन्होंने मुझे।
0: देखें रेडियो की वजह से आपने राज निकला।
2: वजह से आज मैंने गजल सुन ली इनके मुंह से।
0: शादी के बाद सारे शौक आहिस्ता आहिस्ता
2: खत्म हो जाते।
0: कहते ना कि एक बीवी है चार बच्चे हैं, इश्क झूठा है यार सच्चे। जी जी। और अपने सुनने वालों से भी इल्तमास करते हैं कि सामिन आप तशरीफ ला सकते हैं और आज के इस प्रोग्राम में आइएगा, अशआर सुनाइएगा, गीत गाना चाहें गीत भी आप गा सकते हैं और आइए इस महफिल को चार चांद लगाइए। आप के दम कदम से ये रौनकें हैं, आप आते हैं शायरी सुनाते हैं और अच्छा लगता है हमें। इसी तरह हमारा सिलसिला बढ़ता रहता है, साथ साथ गीत तो हम आपको सुनाते ही रहते हैं। और

0: और जी हाँ सामिन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं और बात हम कर रहे हैं शायरी के हवाले से। शायरी चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन शायरी ज़ाहिर है अदब का एक लाजमी हिस्सा है, अदब की खूबसूरती है और बेशुमार लोग उर्दू की तरफ आते ही इस एतबार से हैं और उर्दू के लिए एक दरवाज़े की हैसियत रखती है शायरी की। इसके ज़रिए से उर्दू अदब सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि शायरी की कितनी अहमियत है?
1: नहीं, अहमियत तो है, ज़ाहिर है। ये जो शायरी है, जो हम गाने सुनते हैं, ये भी तो शायरी है ना। जो हम गाने सुनते हैं
0: सब शायरी है,
1: ये भी सारी शायरी है। तो वो ज़रा थोड़ा सा हम गुनगुना लेते हैं तो वो उस तरह से वो फिर अच्छे लगते हैं। तो ये जो ऐसे पढ़ना पढ़ाना होता है, ये थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो शायरी तो ज़िंदगी शायरी के बग़ैर तो कुछ भी नहीं है।
0: मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जिससे उर्दू से कुछ, जो यूँ कह लीजिए कि जब वो मैट्रिक भी उसने अभी नहीं किया था तो वो उर्दू लिखना और बोलना उसके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो ही उसे शायरी का शौक़ हुआ तो उसने उर्दू सीखी और इस अंदाज में उसने सीखी कि अब वो बेहतरीन उर्दू बोलता है।
1: ऐसा ही है।
0: और फिर उसने मास्टर्स भी उर्दू में किया। हालांकि एक टाइम वो था कि उससे अच्छी तरह उर्दू लिखी नहीं जाती थी, मैट्रिक में वो चला गया था, लेकिन उर्दू में हमेशा वो फेल गया होता
1: फेल
0: था,
1: होता था। हालांकि वो आपका मेंस समझ लें कि एक आप
0: मीडियम है ना हमारा।
1: हाँ जी, मतलब यही है और आपकी मदर टंग है ना, ये
0: मदर टंग है।
1: ऐसा ही है। तो उसमें हालांकि फेल नहीं होना चाहिए, वो तो आपको आनी चाहिए, लेकिन बाज़ लोग नहीं ध्यान नहीं देते ना इस चीज़ पे इतना।
2: यहाँ पे मैं एक बात
0: माइक के पास आ जाइए,
2: यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बोलने वाली उर्दू है और जो हमारी तालीमी उर्दू है उसमें बड़ा फ़र्क है। जैसे यहाँ पे बोलने वाली इंग्लिश में और तालीमी या एजुकेशन में जो इंग्लिश पढ़ी जाती है या लिखी जाती है उसमें फ़र्क होता है। तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जिनको उर्दू आती है उनको, उनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है पढ़ना और लिखना भी। इसी तरह इंग्लिश का भी है कि जो लोग यहाँ पे इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन लिखने और पढ़ने में भी उनको बहुत मुश्किल होती है। और ये चीज़ मेरी वाइफ ने अपनी यूनिवर्सिटी में देखी है, जब ये प्रेजेंटेशंस देख रही होती है, सुन रही होती हैं लोगों की, यहाँ के जो बॉर्न हैं उनसे भी इवन के लोगों को फेस नहीं किया जाता,
1: नहीं कर सकते वहाँ पे।
0: ऐसे ही है।
1: हालांकि उन लोगों को तो इधर इतना मसला होना नहीं चाहिए कि वो तो उनकी वो
0: मतलब स्ट्रीट लैंग्वेज कुछ और

0: और जी हाँ सामीन, गीत तो हम सुनते रहेंगे, लेकिन इस वक्त लाइन पे हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम सुनने वाले जनाब शकील साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जनाब क्या हाल है, आप खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है। जी जी वालेकुम अस्सलाम, सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम। जी जी जी जी वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे। जी जी जी जी इनायत कीजिए। शकील साहब अगर आप चाहें तो आप कॉल डिसकनेक्ट करके एक बार फिर कॉल कर लीजिए, आपकी लाइन की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आ रही, तो प्लीज आप काइंडली कॉल को डिसकनेक्ट करके दोबारा मिला लें प्लीज। ठीक है, न जाने क्या मसला है कि आवाज की आज क्लैरिटी आपकी लाइन साफ नहीं है। दिन को भी ऐसा ही था, दिन को भी ऐसा ही था क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है, आप जारी रखें, इतनी आवाज है कि हम सुन सकते हैं। सही, जी जी ठीक है, जी जी इनायत जी। जी जी आवाज आप सही है, अब ठीक है।
1: हकीकतों का वही लोग इकरार करते हैं, जरा सी बात से आबाद होते हैं बरहम, कभी खताए भी दुश्मन माफ करते हैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: वो इत्तेहाद की करते हैं बात किस्मों से,
0: वाह वाह।
1: वो इत्तेहाद की करते हैं बात किस्मों से, जो पैदा कौम में खुद इख्तलाफ करते हैं।
0: क्या कहने क्या कहने, वाह वाह।
1: जिन्हें है आज भी दावा चमन परस्ती का, जिन्हें है आज भी दावा चमन परस्ती का, वो साजिशें भी चमन के खिलाफ करते हैं।
0: क्या कहने क्या कहने, मुझे कोमल जोया की वो खूबसूरत बात याद आ रही है कि बड़ा ही खूबसूरत शेर है ना, कि वाबस्ता चरागों से तरफदार हवा के, वाबस्ता चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी बला के। बहुत खूब बहुत।
1: जुनून में फर्ज नहीं भूले तेरे दीवाने, जुनून में फर्ज नहीं भूले तेरे दीवाने, करीने नाज का तेरी तवाफ करते हैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: आखिरी शेर कहते हैं, नजर हना का नशा इस कदर है लोगों में, नजर हना का नशा इस कदर है लोगों में, कि अर्थ हक से भी वो इनहराफ करते हैं।
0: बहुत खूब बहुत।
1: ये एक गजल थी नजीर का नाम था।
0: जी जी
1: सुना देता हूँ, अगर
0: जी जी जी जी सुनाइए, जी जी सुनाइए।
1: ये माहिर उल कादरी की लंबे दायर की है,
0: बहुत बड़ा नाम अदब का माहिर उल कादरी, बहुत
1: बरसी थी उनके।
0: जी जी ऐसे ही है
1: माहिर उल कादरी।
0: सही,

0: इनायत कीजिए।
1: कहते जिस दिल में खुदा का खौफ रहे, जिस दिल में खुदा का खौफ रहे, बातिल से हरासा क्या होगा। जो मौत खुद लबैक कहे, वो हक से गुरेगा क्या होगा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: आईन चमन बंदी भी नहीं, दस्तूर नवा संजी भी नहीं।
0: क्या कहने,
1: आईने चमन बंदी भी नहीं, दस्तूर नवा संजी भी नहीं। अब इससे ज्यादा गुलशन का शिराजा परेशान क्या होगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और बाबे मोहब्बत से ये कहो, शिकवे न करे, कुछ काम करें। जो जुल्म सितम पे इतरा है, शिकवों से परेशान क्या होगा। जो लोग हवा के साथी हैं, वो अपने खुदा के बागी हैं। जो लोग हवा के साथी हैं, वो अपने खुदा के बागी हैं। इस जुर्म बगावत से बढ़कर ईमान का नुकसान क्या होगा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: जिस कश्ती को मुलाहों ने खुद तोड़ा हो, उस कश्ती के जिस कश्ती को मुलाहों ने खुद तोड़ा हो, उस कश्ती के हमदर्दों को फिर शिकवा पूछना क्या होगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: मुद्दत से कशा का चारी है सयाद में और गुलचीनों में। तंजीम गुलिस्तान होने तक अंजाम गुलिस्तान क्या होगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: जिस चोट से दिल में हलचल है, आहों में वो जाहिर क्या होगी। सीने में जो नशर बरसा है, अशकों से नमाया क्या होगा।
0: बहुत खूब।
1: इस शाम फिजा ने अब तक तो हर तरह से पर्दादारी की, इस शाम फिजा ने अब तक तो हर तरह से पर्दादारी की। जब सुबह बहार आ जाएगी, तंगी ये दाना क्या होगा।
0: बहुत अच्छी।
1: तो आखिरी शेर कहते हैं, मारू कादरी कहते हैं, खलवत हो के जलवत हो माहिर, जलवत हो के खलवत हो के जलवत हो माहिर, दिल खोया खोया रहता है। इस गम की तलाशी कब होगी, इस दर्द का धर्मा क्या होगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब जाना।
1: ये मारू कादरी की गजल थी, तो बड़ी मेहरबानी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और जी हाँ सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे जनाब शकील साहब, बरले से हमेशा तशरीफ लाते हैं, खूबसूरत अशआर सुनाते हैं। चलिए आज के इस प्रोग्राम में एक गज़ल मैं भी शामिल करता हूँ कि मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता, मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता, मोहब्बत भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता। मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता, मोहब्बत भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता। जो मुझसे मिलने आ जाए, मैं उसका दिल से खादम हूँ। जो मुझसे मिलने आ जाए, मैं उसका दिल से खादम हूँ। जो उठ के जाना चाहे, मैं उसे रोका नहीं करता। और जिसे मैं छोड़ देता हूँ, उसे फिर भूल जाता हूँ। जिसे मैं छोड़ देता हूँ, उसे फिर भूल जाता हूँ। फिर उस हस्ती की जानब मैं कभी देखा नहीं करता। और तेरा इसरार सर आँखों पर तुझको भूल जाने की मैं कोशिश करके देखूँगा मगर वादा नहीं करता। और सामिन, हमारे स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं और आपसे भी इल्तमास है कि अगर आप तशरीफ़ लाना चाहें तो आज के इस प्रोग्राम में आप भी कॉल कर सकते हैं। जी आप से बात कर लेते हैं, कोई एक आध शेर आप भी सुना दीजिए, आप यहाँ पे मौजूद हैं तो अच्छा नहीं लगता कि शेरों की महफिल हो और आप
2: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
3: Life admin isn't easy, but getting it wrong can be costly. If you claim government benefits, you must tell DWP about any change in circumstances, such as moving in with a partner, inheriting money or working more hours. For example, if you live with a partner, even if they are away some of the time, this must be reported. If you claim work expenses, only claim costs related to your job, and if you have savings, they need to be declared. If you're telling others about a change, you need to tell DWP too. To check what you must report, search Tell DWP.
4: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
5: This is Link FM. Link FM.
6: दुआओं में उसे महसूस करना भी इबादत से कम तो नहीं। दुआओं में उसे महसूस करना भी इबादत से कम तो नहीं। जरा बताइए तो सही,

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंग महफिल में खुश आमदीद। और जैसा कि आपको बता था कि स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार साहब और खोला इफ्तिखार और शायरी भी सुना रहे हैं। मजे की बात तो ये है, तो ब्रेक से पहले इनसे हम गजल की हमने फरमाइश की थी, तो इन्होंने कहा कि ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे। मैंने कहा चलो ब्रेक भी खत्म होने में कौन सी देर लगती है। माशाल्लाह बड़े अच्छे लहजे में अशआर सुना रहे हैं, लगता है कि इन्होंने भी उर्दू शायरी पे खासा अबूर हासिल किया है अपनी जवानी में। कहते ना कि हमें तो जोम था बस हमें और कोई नहीं, हमें तो जोम था बस हमें और कोई नहीं। सुना है तुम भी गजल ठीक ठाक कहते हो, तो सुनाइएगा इफ्तिखार साहब।
1: जरूर सर, आज आपसे मिलने आए हैं तो आपने हमें जो है हमारी जवानी के वक्त में वापस भेज दिया।
0: सही,
1: प्रवीण शाकिर साहब की एक और गजल जो है वो जी जी जहन में आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके और आपके सुनने वालों के गोश गुजार की जाए।
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: वक्त रुखसत आ गया दिल फिर भी घबराया नहीं,
0: क्या कहने क्या कहने।
1: वक्त रुखसत आ गया
0: दिल फिर भी घबराया नहीं,
1: दिल फिर भी घबराया नहीं। उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं।
0: क्या कहने क्या कहते ना कि एक शख्स के खो जाने का डर क्यों नहीं जाता, एक शख्स के खो जाने का डर क्यों नहीं जाता, ये बोझ मेरे दिल से उतर क्यों नहीं जाता। एक शख्स के खो जाने का डर क्यों नहीं जाता, ये बोझ मेरे दिल से उतर क्यों नहीं जाता। मंजिल पे पहुंच के भी उसे खोना ही पड़ेगा, ये तय है तो फिर शोक के सफर क्यों नहीं जाता।
1: जिंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है,
0: जिंदगी जितने भी है अब मुस्तकिल सहरा में है,
1: जिंदगी जितनी भी है अब मुस्तकिल सहरा में है, और इस सहरा में तेरा दूर तक साया नहीं।
0: क्या कहने।
1: मेरी किस्मत में फकत दर्द तह सागर ही है,
0: आहा
1: मेरी किस्मत में फकत दर्द तह सागर ही है। अव्वल शब जाम मेरी संत वो लाया ही नहीं।
0: बहुत खूब।
1: तेरी आंखों का भी कुछ हल्का गुलाबी रंग था,
0: आहा
1: तेरी आंखों का भी
0: कुछ हल्का
1: गुलाबी रंग था। जहन ने मेरे भी अब के दिल को समझाया नहीं।
0: क्या कहने प्रवीण शाकिर।
1: कान भी खाली हैं मेरे और दोनों हाथ भी,
0: क्या कहने।
1: कान भी खाली हैं मेरे
0: और दोनों हाथ भी।
1: अब के फसले गुल ने मुझको फूल पहनाया नहीं।
0: क्या कहने। लाजवाब है।
1: शुक्रिया।
0: और अभी कुछ अशार हैं या सारी पढ़ ली?
1: ये कंप्लीट एक कुंती गजल थी।
0: सही। चलिए यूं करते हैं कि अब लता की आवाज में प्रवीण शाकिर की बात हो, उनकी शायरी हो, तो फिर लता का साथ गीत हो जाए तो चाशनी बढ़ जाती है ना।
1: जी,
0: तो यूं करते हैं कि लता का एक सदाबहार गीत सुनते हैं, और समिन कोई फरमाइश आपकी भी हो तो बताइएगा ताकि उसे भी आज के इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएं। आइए तो सुनते हैं फिल्म मुगले आजम का ये सदाबहार गीत, जब प्यार किया तो डरना क्या।

0: और जी हाँ सामिन, ये खूबसूरत गीत हम जारी रखेंगे और पूरा गीत सुनेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइन पे आ चुके हैं शफील से हमारे बहुत ही मोहतरम और रेगुलर कॉलर जनाबी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई,
0: क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, ठीक है, खैरियत से?
1: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी जी, तो आज सुनने वालों के लिए क्या तोहफा लाए हैं, क्या सुनाएंगे आप?
1: मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ।
0: जी जी बताइए।
1: मैं एक गजल आपको सुनाता हूँ।
0: अच्छा,
1: और ये गजल मैंने किसी और से नहीं सुनी, किसी से भी नहीं सुनी।
0: अच्छा,
1: और मैंने YouTube पर बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला किसी ने ये गाई हो। सिर्फ एक सिंगर है जिसने ये गाई है और उसके बाद किसी ने ये नहीं गाई, और ये मेरा ख्याल में मुकम्मल भी नहीं है ये गजल। तो आप कोशिश करेंगे कि अगर आप इसके पहला शेर तो मैं पढ़ता हूँ, दूसरा शेर इसका मुकम्मल करना है रुबाई है, उसके बाद फिर एक रुबाई है, फिर उसके बाद उसकी गजल है।
0: अच्छा,
1: गजल के एंड में शायर का नाम नहीं आता, तो उसमें आपने शायर का नाम भी डालना है, चाहे आप अपना नाम डाल लें, लेकिन वो उसका वो मिसरा मुकम्मल कर लेंगे।
0: ठीक है, मुझे बताइए, शायद मुझे कहीं मैंने पढ़ी हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई मसला नहीं, आप सुनाइए।
1: ठीक है।

0: क्या कहने, क्या कहने,
1: इसका दूसरा शेर मुझे चाहिए, ठीक है?
0: सही।
1: इसका रोना नहीं जो तूने किया दिल बर्बाद,
0: इसका रोना बड़ी देर में
1: बर्बाद किया।
0: ये जोश जोश मलिक आबादी की ये गजल है।
1: अच्छा, सोजे गम देके उसने मुझसे यूं इरशाद किया,
0: कश्मकश दहर से आजाद किया।
1: आजाद किया।
0: सही सही सही सही।

0: क्या कहने उस्मान भाई, क्या कहने, आज मजा आ गया। क्या ही खूबसूरत आपने गजल सुनाई। पहली गजल थी जोश मलई आबादी की, और दूसरी जो है ये मैं ढूंढूंगा, इसका मुझे भी सुनी जरूर है, लेकिन इसके कुछ शेर चीदा चीदा सुने, सारे नहीं सुने, लेकिन मैं कोशिश करके ये आपके लिए लाऊंगा। मास्टर अयाज अली। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसे जरूर ढूंढूंगा और अपने सिस्टम में इसे शामिल करूंगा।
1: और ये एक नायाब कैसे थे मेरे पास, अभी मैंने एक दोस्त को दिया है, मेरे ख्याल में ये उसने किया था 1975 अराउंड 80।
0: ठीक है,
1: सिर्फ कैसेट में है और किसी के पास ये नहीं होती जो
0: आपको पता ही। आजकल अपलोड करने वाले क्या क्या खजाने ला रहे हैं उस्मान भाई, बेशुमार ऐसे कलाम मैंने खुद ढूंढे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया, मजा आ गया, आपने बहुत ही अच्छा कलाम सुनाया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह
0: हाफिज़। और जी हाँ सामीन, अभी जनाब उस्मान साहब हमारे साथ है टेलीफोन लाइन के ज़रिए, शेफील्ड से आज के इस प्रोग्राम में शरीक थे। खूबसूरत कलाम सुनाया, जो पहली गज़ल सुनाई थी उसके शायर थे जनाब जोश मलई आबादी, और जो सेकंड इन्होंने कलाम सुनाया इसका मैं भी ढूंढूंगा। गज़ल के चंद अशार सुने हैं लेकिन पूरी गज़ल मुझे भी नहीं आती, मैं ज़रूर ढूँढूँगा। मास्टर अयाज की शायद बता रहे थे गायकी है, मैं ज़रूर इसे ढूँढ के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। अब चलते हैं और जो गीत हम सुन रहे थे उसी को जारी रखते हैं।

0: Listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: जिंदगी के रोजमर्रा के काम आसान नहीं होते, लेकिन गलत अंदाज में करने पर नुकसान हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट बेनिफिट क्लेम करते हैं तो अपनी जिंदगी में किसी भी तब्दीली के बारे में DWP को बताना जरूरी है, जैसा कि पार्टनर्स के साथ रहना शुरू करना, विरासत में रकम का मिलना या काम का दौरानिया बढ़ाना। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पार्टनर के साथ रहते हैं, चाहे वो कुछ वक्त के लिए ही मौजूद ना हो, तो इस बात की रिपोर्ट देना जरूरी है। अगर आप काम के खर्चे क्लेम करते हैं तो सिर्फ वही खर्चे क्लेम करें जो आपके काम से मुतल्लिक हों, और अगर आपके पास सेविंग्स मौजूद हैं तो उनका बताना भी जरूरी है। अगर आप किसी और को अपनी सिचुएशन में तब्दीली के बारे में बता रहे हैं तो DWP को बताना भी जरूरी है। क्या रिपोर्ट करना जरूरी है, ये जानने के लिए टेल DWP सर्च करें।
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ लिंक FM।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: Tu sab ko

0: ए खजूर, बाप की गाड़ी समझा गया?
1: टसन क्यों देता है बे खटारे वाले, हम तो मर्सिडीज रखने वाले हैं।
0: मुंह देखा क्या आईने में? अरे हटा सावन की घटा। ए भाऊ समझ जा, सुधर जा, पतली गली से निकल जा, चल चल चल।